0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मतराज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी, आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप
1: हाँ?
0: बताएं वहां पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के
1: हाँ
0: लिए?
1: दीदी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपाल दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है?
1: अमरावती विदर्भ में बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी, और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: उड़े जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह आप... जी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: लेकिन इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है स्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हालचाल हैं, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है, और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है, और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिक द्वारा श्रीनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है। ज्योत भी वहीं वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम।

0: हेलो फरमाइश।
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती
1: जी,
0: में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर 2 सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून लगाते कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आज बंद है।
0: हाँ तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हंसी रात फिर हो न हो।
0: कालजयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा, मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुसैर अल जाफरी के ये कलाम आप सुन रहे थे। अशोक खोसला की आवाज में कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जगजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

कहा तिंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे इस फिल्म इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर

ऐरा गैरा नथु खैरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाई गई, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल, कवाली, पॉप गीत और लोकगीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है, तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत चुने गए हैं जिनमें पारिवारिक रिश्तों की भी बातें हैं और परिवार का आपसी संगठन, आपसी प्रेम भी दर्शाया गया है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

बिल्कुल कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जयघोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी में आज सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्राणी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

किशोर कुमार की आवाज में ढोंगी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुनवा रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो हैं ही, साथ ही है पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं महबूब के बोल, ए आर रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। विविध भारती पर इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

ऑर्डर

0: जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या
0: जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या
0: असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन, ओ मामा।

0: ये दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे,
0: सच भाई हुए हैं।

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात हों।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं कि रोजाना हमारी फेसबुक पेज पर हम पोस्ट करते हैं एक इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे होते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गीत। यानी रोजाना कार्यक्रम में जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारे पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी माफ कीजिएगा 100K लिखा होगा, यानी कि 1,00,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इस पर ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं। गर्मी जहां झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नर्म फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, रेलगाड़ी का सफर, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई, सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गर्मियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने 2-3 खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियां आपके लिए फिल्में ज्यादा देखने का मौका लेकर आती थी या कुछ नहीं, और क्या गर्मियों में आप पिकनिक का प्लान बनाते थे, या जब बत्ती गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा झरा है, या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ, कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज्यादा पड़ती थी या दुलार ज्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बचपन में थे शरारती या शरीफ, या बचपन की इन यादों को सुनकर आप भी भरते हैं ठंडी ठंडी आहें, या आपके अंदर अब भी आप अपने इस बचपन को जीते हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंचाइए। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं पहले कार्यक्रम का पहला गीत।

मुकेश की आवाज में देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद किया जा रहा था बचपन को, क्योंकि आज हम भी कुछ याद ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की बातें हो रही है। हमारे एक साथी ने लिखा कि सुरीला सफर में आज अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, बचपन की गलियारों में झांकेंगे। तो आज की इबारत में से याद शब्द तो हमने ले लिया एक गीत में, और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, आप हमें बताइए। हमारे साथी ने बताया, हमने पूछा था कि कौन कौन से और खेल आप खेलते हैं, क्योंकि हमारे इस इबारत में तो सिर्फ दो खेल के नाम हैं। तो उन्होंने बताया कि पकड़ दांव, लंगड़ी, खो खो, रुमाल दांव, कबड्डी जैसे कई खेल खेला करते थे। वेकेशन में दोस्तों के साथ उनके खेतों में जाते थे, नहाते थे, कच्चे आम, इमली, शहतूत जैसे फल खाने का आनंद भी खूब उठाया है। बचपन अनमोल था, कोई भी कीमत से उसे नहीं खरीदा जा सकता। हमारे एक और साथी ने बताया कि बचपन में पढ़ता था तब दोस्त फिल्म दिखाने हमें काका जी सभी कजन भाई को लेके गए थे। बचपन में छोटे धर्मेंद्र होते हैं तो पिताजी उन्हें आती जाती रेल दिखाते हैं, गाना बजता है, हम उसे आकाशवाणी गीत कहते थे। फिल्म में फिर कई बार गाना बजता है, जब धर्मेंद्र बड़े हो जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं तब भी गाना बजता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और हमारे एक और साथी ने कहा कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हम सुबह का खाना लेकर अपने परिवार के साथ खेत पर चले जाते थे, वहीं वटवृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ हम खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर सुस्ताकर पेड़ के कैरियां तोड़कर लाते थे। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता था तो हम पहले उसका रस पी लेते थे, कितना सुकून मिलता था, काश वो बचपन के दिन वापस लौट कर आ जाएं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज गीतों के जरिए जरूर आपको कुछ यादें ताजा हो सकती हैं। हमें ये भी बताइए कि क्या आप बचपन को जीते हैं अब भी, क्या पिकनिक वगैरह पर कहीं जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और ये सारी बातें बताते बताते हमारे साथी जब गर्मियों की बात कर रहे हैं तो वो पसीने की बात बहुत कर रहे हैं कि भाई बड़े पसीना छूटता है, गर्मी बड़ी तपती है। तो एक गीत वैसा ही सुना दें आपको, बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है।

0: हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारी एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गांव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो जरूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीजी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, छुपम छुपाई, पोसंपा, लड्डू कंचे, माफ कीजिएगा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोल पुलिस कैरम, ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर हो जाती है। पिछले एक दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफर में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मजा नहीं आता जो रेल की गाड़ी पे यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज्यादा डरा के रखती थी, हम लोगों को उनकी आंख से डर लगता था, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए। और नानी बी के घर में नानी को ज्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे ना कि इतनी शरारतें करते थे, थोड़ा डराना तो जरूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कहने कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। जमीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके चार अलग अलग रंग की चूड़ियों को रखकर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाई चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में। भाई इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम कार्यक्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है, ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से। हमारे साथियों ने कहा बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुलस्ती हुई तेज गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफर करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ पर आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपके साथ आपका ये सफर सुहाना हो, हम यही कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है।
1: तूने मुस्कुरा के

0: छुट्टी हो गई,
1: दूसरी ढूंढ ले लुगाई।
0: मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, क्या मेरी छुट्टी हो गई, जान किस अदा से और जान किस

0: का मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई का मेरी छुट्टी हो गई। जाने किस अदा से, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई।
1: मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले की आवाज में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथ ही आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है, जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस

में बांट रहे हैं, और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं, और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं हुई, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूं, एरोप्लेन की आवाज आती है तो ऊपर देखता हूं, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूं, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूं। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला खेल, चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्ची लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था। ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से जलने वाले पंखे याद करें, हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रही हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी, हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है, तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए, तो आप हमें बताइए। तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

0: घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कहने की आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतनी रोमांच होता है, गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गांव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहाँ सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहां जाएं। और गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें, जहां के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है। और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते, और जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी। और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे। हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने कि बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं। और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाना। ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने जिक्र किया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था। और हम दोस्त के घर का दरवाजा, हर दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह हैं और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था। ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे, पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, आओ आओ आओ आओ, ये कैसे चले लाओ पैसे चले, आहा, खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन, फिर तीन, फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो।
3: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
4: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक सांदूक, एक बंदूक, एक तलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक दी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया,

0: हो।
1: फिर क्या हुआ?
2: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पटका, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक घीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
1: मगर नानी क्या कर रही थी?
2: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
1: कितनी गहरी?
2: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15-15, 2-3, 3-45, 4-75, 96, 7-5, 8-20, नंबर 35, गले में रस्सा।
3: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, बसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रही हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी। गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं। खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते। एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी। उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे, फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी। लड़ते भिड़ते, रोते हंसते, सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें सोचते नहीं हैं, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं, और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए, तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे, उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे। सीटी बजाना, कोयल की आवाज, टक टक की आवाज निकालना आदि, वो सब आवाज मेरे अंदर बैठी है, बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वही हमारे साथी ने बहुत साथी बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, और शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना दे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बताया कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने की नानी की डांट तो नहीं पड़ी पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज्यादा पाया। हाँ कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

मैंने नहीं तो

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम पर के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए एक छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई

बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2, 3, 5, 10 पैसा देते थे। निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे। तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है। तो किसी ने आवाज़ दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए, तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाते भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे। ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़म कड़ाई या गिल्ली डंडा। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे, वो भी रेलगाड़ी से। उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे। सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीजों का। और एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा। वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहाँ चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तो अब भी बना हुआ है। और हमारे एक और साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कहने कि गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वे मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो तो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्स मैन को देख कर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे, आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का ये?

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे।

पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे, भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैड साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना, और जैसा इसमें कहा गया भी, समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं, और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जनजागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंददास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में, देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाने लगे।

समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए मुकुंद दास जी कहते हैं,

बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह

0: আসি, কাপুক মেদিনী ফিম্পা দেখাতে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম।
1: ये वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र, इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिलें तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
2: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये

शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन, इतना ही उसका अर्थ है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का

0: बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिल, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे।
1: कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के साथ कर्जन के बार बार मतभेद होने लगे। राजनीतिक फैसले लेते समय वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सेनाधिकारियों का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
0: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
2: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
1: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
2: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे।
1: यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का।
3: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद

0: संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबूधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी

0: 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
4: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेन्द्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बाराबंकवी ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला के इस गीत में।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

0: गोपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते।

जैसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते। अरे अरे डॉज गाड़ी के इंजन की कसम,

भी हुआ है और न होगा, देखो मेरे

रोजी है।

राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: मेरे प्यार में दौड़े दौड़े सभी
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: जानने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास। तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी जी जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो टीन एजर्स बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, जवार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी जी जी जी जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: जी, मेरा नाम वर्षा धगट है। जी, मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं।
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है।
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी, वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और सच
1: ये हर
0: में
1: महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को और खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती हैं।
0: जी, बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउसवाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम चोर मूवी का तुझे संग प्रीति लगाई करें।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी। मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ,
0: क्या बात है, बहुत
1: अपने लिए
0: अच्छी
1: समय
0: बात।
1: निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को
1: जी
0: हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं
1: जी
0: आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, उन्हीं
0: जी
1: के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी
1: बहुत महत्व है सभी के लिए। जी
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना।
1: जी
0: और हम
1: बिल्कुल
0: महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना।
1: जी, बहुत
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है,
1: जी
0: तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी।
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया।
1: शिरपुर
0: जी,
1: हाँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में? मेस चलाती हैं, क्या बात है, बहुत
1: हाँ,
0: अच्छी बात है। ये
1: हाँ,
0: तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाए बोलते, कभी कम ज्यादा हो जाता
0: और सचमुच जब
1: है।
0: कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ, खाने को तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत से फल मिलता, ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको? हेलो
1: तो हेलो फरमाइश,
0: फरमाइश।
1: गाने सुनते हो तो रहता रेडियो है दिन भर।
0: दिन भर रेडियो चालू रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है आपका?
1: राजबाई, राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: हाँ, गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात है,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सचमुच यानी परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
1: अच्छा लगे, देवर है, देरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनती हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती है आपके?

0: पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लाड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दो गाड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते। मेरा
0: क्या नाम है आपका?
1: नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत से आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम कर

0: जाती है। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं, घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर का काम खाली।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती है आप? कभी खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे दिन में बच्चे का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: खेत है, हमारा खेत में जाना पड़ता
0: है। खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके हैं कौन, मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद छाटुई से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउसवाइफ हैं और रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में। आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर
1: हाँ
0: घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हाँ हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर
1: मशीन
0: हैं,
1: से।
0: है ना?
1: हाँ हम अकेले सब समेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी, कि
1: हाँ कहिए।
0: खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये 1 घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूं, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
1: हाँ करते हैं, 1 घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं
0: और उसमें आपको खुशी
1: और जब
0: मिलती है?
1: खुशी मिलते हैं। हाँ अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना, तो परिवार भी
1: हाँ
0: खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ
1: हाँ
0: जीवन
1: हाँ
0: जीते हैं।
1: हाँ जी
0: तो बस खुश रहिए,
1: हाँ
0: मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और
1: हाँ
0: आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी,
0: जी, और आपने
1: दो
0: पसंद का,
1: महीना से छटपटा रहे थे। हाँ जी कब 2 महीना पूरा होगा।
0: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम, जसमती
0: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: मैया तेरे बोले नंद लाला,
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए,
1: हाँ,
0: अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य।

0: महाबलेश्वर है।
1: जी जी जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
0: बहुत ही अच्छा जगह है
1: जी।
0: नटराज मंदिर है। बहुत ही अच्छा है, आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
1: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
0: दीदी मैम तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए खास आपके लिए फोन करने के लिए।
1: क्या बात है, क्या बात है, और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया
0: बहुत
1: है।
0: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया, मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ। 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें।
0: जी
1: और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती है, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
0: जी मेरा 57 एज है दीदी।
1: अच्छा
0: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
1: क्या बात,
0: साड़ी सेंटर में, सिटी साड़ी सेंटर में।
1: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
0: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल पर है, मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है।
1: जी
0: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
1: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं।
0: हाँ,
1: प्यारे प्यारे गीत सुन
0: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
1: क्या बात
0: है, काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
1: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना?
0: जरूरी है, बराबर है
1: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती हैं?
0: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
1: बहुत प्यारा गीत आपने चुना है, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
0: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग काला।

0: तो ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002. दूसरा नंबर है 2867028 2867028. और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे

मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न हैं, उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं हैं। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्य भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, यह वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थी। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ

भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका। सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो, हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है, चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी, ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाक्य अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सर

ला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थीं कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था, एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुर मुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था, तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली
नीलकंठ का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब कर

न चाहती। आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानि पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रैवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा UPI पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: छाया गीत
2: लग जागने
1: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
1: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: इश्क से

हम आकाशवाणी भद्रा से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। सामिन शाम के 5 बज चुके हैं और रोज़ की तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं लेकर भद्रवाही लोकगीत। सामिन, प्रोग्राम के आगाज़ में समाप्त कीजिए आबिद बशीर की आवाज़ में प्रोग्राम का ये पहला भद्रवाही लोकगीत।

सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे मोनिका देवी और संगीता देवी को। आइए अब सुनते हैं मोरराज मिश्र की आवाज़ में एक और भद्रोही लोकगीत।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदन का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाद

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउथ विटिदसन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहाँ 68.8 मीटर तो एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पे समय मोहतरम 6:05 सपद पेश प्रोग्राम गर्मी बाइन हिंदी खतरा।

0: रात 8:30 पर आप हमारे स्टूडियो से समाप्त करेंगे चंद गोजरी नगमे। रात 8:45 पर समाचार संध्या। रात 9 अंग्रेज़ी में खबरें और 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। समय रात 9:30 पर प्रोग्राम हालात हाजरा आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। समय ये थप से लेकर रात 10 तक रिले व नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:15 पर डोगरी में खबरें व तबसरा आकाशवाणी जम्मू से रिले किया जाएगा। रिले का ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद

0: तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: At 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, non-stop धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है।
1: आकाशवाणी जम्मू है सन्या खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्ने मैं विजय बजाज। जम्मू कश्मीर काबीना ने ज़ैनाकोट आले ग्रिड सब स्टेशन दा दर्जा बधाने दी मंजूरी दे दित्ती है, जिदे पर अंदाजन 67.66 करोड़ रुपए दी लागत आउग। मतियाने सरबंधी राष्ट्रीय एजेंसी NTA ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 दा मतियान आउंदी 21 जून की ऐतवारें परतिए करवाने दा फैसला लैता है। 100 दिनें दे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान दे पहले त्रीए दिनें च 866 जनें की गिरफ्तार कीता गया है, ते नशीले पदार्थें दी तस्करी करने आलें दी 41.85 करोड़ रुपए की संपत्ति कुड़क कीती गई है। रजौरी जिले च कब्जा रेखा कश रहने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अपील का समर्थन कीता है, 1 बरे लई सुन्ने की खरीद नहीं करने का प्रण पाया है। मौसम विभाग ने अज जम्मू कश्मीर च हौली बरखा ते अंधी झक्खड़ की पेशनगोई की है। उआं 16 थमां लेके 18 मई तोड़ी मौसम खुश्क रौने के आसार न। खबरें की तफसील कन्ने अभिलाषा शर्मा।
2: जम्मू कश्मीर काबीना ने ज़ैनाकोट आले ग्रिड सब स्टेशन का दर्जा बधाइए। इसी 450 मेगावोल्ट एम्पेयर थमां 780 मेगावोल्ट एम्पेयर करने की मंजूरी दे दी है। एदे पर अंदाजन कोई 67.66 करोड़ रुपए खर्च किए जांगन। इस बारे घोषणा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हुंदे आसिया की गई है। काबीना ने 5.47 करोड़ रुपए की लागत कन्ने 132 केवी पामपोर रावलपुरा ते रावलपुरा बेमिना ट्रांसमिशन लाइन का दर्जा बधाने की भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हुंदे दफ्तर पासिया दी गई जानकारी मुजब इन्हें परियोजनाएं का मकसद श्रीनगर ते एदे आले दुआले दे इलाकें च ट्रांसमिशन की समर्थ बधाइए, बिजली ढांचे की तगड़ा बनाना है, तां जे उपभोक्ताएं की बिजली की बेहतर सप्लाई हासिल हो सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने भारत सरकार की अनुमति कन्ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 की परीक्षा 21 जून 2026 ऐतवारें परतिए करवाने का फैसला लैता है। मेदवारें की सलाह दी गई है जे ओ कुसै भी जानकारी आस्तै NTA दे आधिकारिक माध्यम पर गै भरोसा करन। इस बारे और जानकारी लेने लई ओ 011-4075900 उपर फोन करी सकदे न। इस बारे और जानकारी दिंदे होए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होरें आख्या,
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
2: जम्मू कश्मीर दे 100 दिनें दे नशा मुक्त अभियान दे पहले त्रीए दिनें च पुलिस ने पूरे जम्मू कश्मीर च नशीले पदार्थें दे गैर कानूनी कारोबार च शामल लोकें खिलाफ कार्रवाई च बड़ी मती कामयाबी हासिल कीती है। इस कट अवधि दौरान पुलिस 724 NDPS मामले च 866 जनें गी गिरफ्तार कीता है। इन्ना गै नहीं 667 किलोग्राम नशीले पदार्थ ते नशीली दवाइयें दे 90,000 कोला मते यूनिट जब्त कीते न। एदे अलावा 41.85 करोड़ रुपए मुल दियां 97 संपत्तियां जब्त कीतियां न। एक संवाददाता सम्मेलन च जानकारी सांझी करदे हुए DGP नलिन प्रभात होरें दस्सिया जे गिरफ्तार कीते गेदे लोकें च गुलजार अहमद उर्फ लव गुजर ते अवनीत सिंह उर्फ नागी शामल न, जिंदी पुलिस गी कई सारे मामले च पहले थमां गै तलाश ही।

0: श्रीनगर दे बदामी बाग आर्मी कंटोनमेंट च इक विशेष एनसीसी राष्ट्र एकता कैंप शुरू होआ। इस कैंप दा मकसद बक्ख बक्ख राज्यें दे बच्चें गी इकजुट रौह्ने ते शांति दा सनेहा देने दी सिखलाई देना ऐ। एक्ती बच्चें गी जम्मू कश्मीर दी संस्कृति, रिवायतें ते रीति रिवाजें बारे सिखलाई दित्ती जा करदी ऐ। इस कैंप च खेड प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम ते बक्ख बक्ख थाहरें थमां आए दे कैडेटें बश्कार सिखलाई ते गल्लबात गी बढ़ावा देने लेई तैयार कीती गेदी गतिविधियां बी शामल न। कैंप च हिस्सा लैने आले कैडेटें आखेआ जे इस कार्यक्रम कन्नै उनेंगी बक्ख बक्ख संस्कृतियें बारे च जानने दा मौका थ्होग। इस बारे होर जानकारी दिंदे होई एनसीसी श्रीनगर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर गुरबीर सिंह होरें आखेआ,
1: पिछले कल से हमारा श्रीनगर में स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप स्टार्ट हुआ है। इफेक्टिवली आज पहला दिन है जो कि हमने शुभारंभ अपने सर्व धर्म स्थल से किया है। स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो होता है ये देश के तकरीबन 8 प्रांतों में होता है, खास करके श्रीनगर, नॉर्थ ईस्ट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड में, देन गुजरात, राजस्थान और काकीनाडा में। मकसद इनका होता है कि हमारे देश के बच्चे जो हर एक स्टेट से आते हैं वो सारे घुल मिलकर रहें, एक भाईचारे में रहें, अमन और शांति का पैगाम आगे बढ़ाएं।
0: त्रै रोजा ऐतिहासिक सालाना शिव पार्वती मेला अज्ज थमां उधमपुर जिले दी तहसील ते ब्लाक मोंगरी दे सरदब्बड़ च शुरू होआ। इस मेले दा उद्घाटन उधमपुर दे डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा होरें एसएसपी उधमपुर अमृतपाल सिंह हुंदे कन्नै रलिया कीता। मेले दे पहले ध्याड़े बड़ी मती गिनतरी च श्रद्धालु ते सैलानी उधमपुर जिले दी तहसील मोंगरी दे सरदब्बड़ च पुज्जे। श्रद्धालुएं ते मकामी लोकें भगवान शिव ते मां पार्वती दा आशीर्वाद लैने लेई पवित्र तीर्थ स्थान पर मत्था बी टेकेआ। इस मौके पर बोलदे होई उधमपुर दे डीसी मिंगा शेरपा होरें इस चाली दे शानदार समारोह दे आयोजन लेई मेला कमेटी गी मुबारकबाद दित्ती। मगरा पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई डीसी उधमपुर होरें गलाया,
2: आज हमारा वार्षिक मुंगरी मेला होता है उसका पहला दिन है, तो आज मैं और एसएसपी साहब भी यहाँ आए थे कि जो हमारे मेला की व्यवस्था है, जो हमारी मेला अधिकारी आरुषि मैडम, जो हमारी तहसीलदार भी उन्होंने किया है, तो हमारी यही कोशिश है कि आने वाले 3 दिनों में जितने भी श्रद्धालु पूरे जिले भर से, पूरे जेएनके से आए, उनको सुख सुविधा मिले। सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है, ये इंश्योर किया गया कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो हमारी यही कोशिश है कि इस साल के कुछ और हम कोशिश करें कुछ नया करने के लिए। जैसे आपको पता हर साल यहाँ होता है तो हम कोशिश करेंगे जैसे वॉशरूम जैसे फैसिलिटीज, कोई शेड्स और बनाएं, जो भी श्रद्धालु साल में आते हैं कोई भी इशू ना हो।
3: ये खबरां साड़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। इदे अलावा तुसे खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे हो।
0: ये खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू पर सुनारदे हो। बाकी दी खबरें कन्नै विजय बजाज।
3: समाजी वचनबद्धता दा शानदार प्रदर्शन करदे होई रजौरी जिले च कब्जा रेखा कश रौह्ने आली महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अपील पर इक बरे तोड़ी सुन्ने दी खरीद नहीं करने दा प्रण पाया है। आकाशवाणी दे जम्मू संवाददाता ने जानकारी दित्ती है जे इस पहलकदमी ने कई सारे दिग्राएं च रफ्तार फगड़ी है, जित्थे महिलां प्रधानमंत्री हुंदे स्नेह दा समर्थन करने लई इकजुट होई गईआं न, जिहदा मकसद आर्थिक अनुशासन, आत्म निर्भरता ते जिम्मेदार समाजी व्यवहार गी बढ़ावा देना है। इस संकल्प दे कन्नो कन्नी मकामी महिलाएं इस गल्लै गी यकीनी बनाने लेई घर घर जाइयै जागरूकता अभियान भी शुरू कीता है, जे प्रधानमंत्री हुंदी आसिया कीती गेदी 7 सार्वजनिक अपीलां खित्ते दे हर इक घरै तोड़ी पुज्जी सकन। आकाशवाणी समाचार कन्नै इस बारे गल्ल करदी होई इक मकामी बसनीक शिखा बाली ने आखिया,
4: इस तरह के मैसेजेस जो है हम बांट रहे हैं कि एक साल तक हमें अपने देश के साथ खड़ा रहना है, कि हमारा देश बहुत स्ट्रांगली जो भी सिनेरियो इस टाइम वर्ल्ड में बना हुआ है इससे बहुत ताकत से बाहर निकले।
3: ईंधन की बचत लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अपील दे बाद जम्मू यूनिवर्सिटी ने ईंधन की बचत ते काम भरोने वाले खर्च की घट करने लई कई सारे ईले कीते न। वाइस चांसलर उमेश राय होरें आखिया जे ओह देश दी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बनी गई न जिहड़ी PhD दे सब्बे वाइवा मतिहान ऑनलाइन लै करदी है। इहदे अलावा यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय सतह दे सम्मेलनें च वक्ताएं दी वर्चुअल ढंगां नै शमूलियत गी भी बढ़ावा देआरदी है। इक होर ईले दे तहत पुंछ च होने आली अकैडमिक काउंसल दी बैठक भी हुन जम्मू मुंतकिल कर दित्ती गई है तां जे गैर जरूरी यात्रा थमां बचिया जाई सके। इस बारे अपने विचार सांझे करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश रायो ने आख्या,
5: प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है वो जो हमारी ऑयल को लेकर के ग्लोबल क्राइसिस खड़ी हुई है, मैं उसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में देखता हूँ, और राष्ट्रीय आपदा में हर सिटीजन का धर्म बनता है कि वह देश के साथ खड़ा रहे। उस दिशा में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस किया है वो 3-4 चीजों को लेकर के किया है, तो मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है हमको धीरे धीरे करके जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है वो

0: फ्यूचरिस्टिक विजन है और उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
1: किश्तवाड़ दे जिला शिक्षा ते सिखलाई संस्थान यानी डाइट पासिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल छात्रू दे सहयोग कन्नै छात्रू च बड़ी मती प्रतिष्ठा आले राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी दे तहत जोनल सतह दी एक विज्ञान प्रदर्शनी ते सैमीनार दा सरिस्ता कीता गया। ए सैमीनार प्लास्टिक प्रदूषण घट करने दे विषय पर आधारित हा ते इंद्रवाल जोन दे 14 स्कूलें बड़े जोश कन्नै एदे च हिस्सा लैता। हाई स्कूल सिगड़ी भाटा ने एदे च पहली थार हासल कीती। इस बारे च होर जानकारी सांझी करदी होई मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल छात्रू दे प्रिंसिपल विनोद कुमार होरें आखिया,
2: हमने एक जोनल लेवल कंपटीशन करवाया है जो कि 53rd राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी थी ऑन द थीम स्टेम फॉर विकसित एंड आत्मनिर्भर भारत। इसके साथ साथ हमने वन डे सेमिनार भी करवाया जिसका टॉपिक था रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। इन बच्चों में बहुत सारा टैलेंट है।
1: अखीरे च खास खास खबरां एक बारी परतिए।
3: जम्मू कश्मीर काबीना ने जनाकोट आले ग्रिड सबस्टेशन दा दर्जा बधाने लई मंजूरी दे दित्ती है जिदे पर अंदाजन 67.66 करोड़ रुपए दी लागत आग। मतेयाने सरबंधी राष्ट्रीय एजेंसी एनटीए ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 दा मतेयान ऑन दी 21 जून गी ऐतवारे परतिए करवाने दा फैसला लैता है। 100 दिने दे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान दे पहले 3 दिनें च 866 जने गी गिरफ्तार कीता गया ते नशीले पदार्थें दी तस्करी करने आलें दी 41.85 करोड़ रुपए दी संपत्ति कुर्क कीती गई। राजौरी जिले च कब्जा रेखा कश महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अपील दा समर्थन कीता ते एक बरे लई सुन्ने दी खरीद नहीं करने दा प्रण पाया है। एदे कन्ने गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ।
4: आओ हुण करचै गल गुआंढियें दी। पाकिस्तान च इसलै दहशत बनी दी है ते कारण है भारत दे प्रधानमंत्री दा बड्डा बयान जेदे मगरा पाकिस्तान दी जनता भी सरकारे पर थू थू करार दी है। दरअसल भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें किश दिन पहले जिस तरीके थमा अपने मुल्के दी जनता गी एक संदेश दिता हा जे कुसे भी स्थिति आस्ते तैयार रवो ते कन्ने ए भी आख्या हा जे जिन्ना होई सके पेट्रोल बचाओ ते उन्ना गे इस्तेमाल करो जिन्ना जरूरी है। तुआई दुई बखी प्रधानमंत्री होरें ए भी आख्या हा जे एक बरे तोड़ी होई सके ते सोने दे जवाहरात भी घट खरीदो ते विदेशी दौरे भी नहीं करो। उन्हें सरकारी विभागें ते कारपोरेट सेक्टर गी वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन काम करने आस्ते भी आख्या। पर इन्हें सबने दे चलदे बड़ी गल ए है जे इन्हें उपदेशें कन्ने भारत दे लोग अपने आप गी एडजस्ट करार देना ते गुआंढियां दी सरकार बड़ी गै मती परेशान होआ दी है। उन्हें गी लगदा है जे भारत आखर ऐसा के करने आला है। पाकिस्तान दी सरकार दी इस गल उपर त्रेली आर दी है। दुई बखी गुआंढी सरकार उपर उत्थों दी जनता भी खफा है जे भारत दी सरकार ते प्रधानमंत्री अपनी अर्थव्यवस्था ते जीडीपी गी हमेशा चिंता करदे न ते पाकिस्तान है जिसी इस बारे किश पता नहीं है कि के करना है। ना अर्थव्यवस्था दी चिंता है ते ना गे जनता दी। इससे वजह कन्ने कोविड दे समय भी पाकिस्तान पूरी दुनिया थमा बख रही गया हा। इसलिए भी उत्थे हालात इयो जे न। पाकिस्तान परेशान है जे आखर भारत करना के हाल है। इस मुल्क गी ए फिकर नहीं है जे उत्थे अर्थव्यवस्था कनेही है, जनता दे कम काज दा के हाल है, रोजगार कियां बधाना है ते उत्थों दा युवा के करग, मुल्खे दी तरक्की कियां होग ते बाकी मुल्खे कन्ने बेहतरीन रिश्ते कियां बनगन तां जे दुनिया दे इस हिस्से च शांति कियां बनी रोए। बस चिंता इस गल दी है जे भारत नवा के करने आला। पाकिस्तान च इस गल दी भी दहशत है जे कुते भारत अपना हिस्सा पीओके थमा वापस नहीं लैदा। अगर ऐसा है ते गुआंडी गी भी तैयारी रखनी लोड़दी, पर साडा गुआंडी एदे चगे फसेदा है ते इसे चक्रे च पेदा है। पाकिस्तान दी जनता दा आखना है जे भारत च सरकार अपने नागरिकें दा इन्ना ख्याल रखती है जे कोई भी फैसला लेने थमा पहले जनता गी अलर्ट कीता जंदा है, चाहे पेट्रोल दी कमी दी गल होए या और कोई समस्या। पहले गे मुल्खे च हालात दे बारे चर्चा हुंदी है। तुहाई गुआंढी मुल्ख च पेट्रोल डीजल दी कीमतां भारत थमा दुनिया होने दे बावजूद भी पाकिस्तान ने कदे अपनी जनता गी ए नहीं आख्या है जे पेट्रोल दा इस्तेमाल घट या जरूरत होने पर गे करन। पाकिस्तान च पेट्रोल दे दाम बद्दे रोंदे न ते जनता हाहाकार मचाई रखदी है। इस गल दा किश पता नहीं है जे आखिर की ते किन्ने दाम बदाने न, जदके जनता लगातार सरकारे गी सवाल कर दी है ते पाकिस्तान दी सरकार जे एक भी बयान उत्थों दे प्रधानमंत्री या फी राष्ट्रपति या कुसे भी मंत्री राय नहीं आया जे जनता गी के करना लोड़दा। गुआंढी मुल्खे च हालात इये जे न जे लगातार महंगाई बद्दी जा रही है। अमीर और अमीर होआरदा है ते गरीब और गरीब, आम जनता च भी फासला आवारदा है ते सरकार गी कोई जानकारी नहीं है जे मुल्क कुस बखी जा रहा है, जदके पाकिस्तान

दी जनता च आम धारणा ए है जे आखिर उंदी सरकारे गी उंदी चिंता की नहीं होआ दी है। भारत एक मजबूत मुल्क है ते इत्थे सब किश ठीक है। छड़ा पेट्रोल दी कीमत किश रुपए गे बदनी हवे ते सरकार जनता गी पहले गे सतर्क करी उड़दी है ताजे जनता अलर्ट रवे। इसे करी इत्थे होआ दे बदला या फैसले दा असर गुआंढी मुल्क ते उत्थों दी सरकार उपर इन्ना हुंदा है जे ओ परेशान होई जांदे न। बेशक कारण दोने दा बख-बख है, सरकार डरी दी है ते लोक नाराज न। ए है साडे गुआंढी पाकिस्तान दे हालात। गल गुआंढिये दी अज बिस इन्ने गी, कल कुसे और विषय पर परतिये अपने गुआंढिये दी गल करगे। नमस्कार।

हम आकाशवाणी भद्रा से आपसे मुखातिब हैं एफएम 101 मेगाहर्ट्ज पर। समिन शाम के 6:30 हुए हैं। आप पेश खिदमत है प्रोग्राम गुलदस्ता, पेश कर रही हैं शगुफ्ता।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद।
0: कैसे हैं आप सब?
1: बहुत अच्छे।
0: ठीक है, आप सुन रहे हैं बच्चों का पसंदीदा प्रोग्राम गुलदस्ता और मैं हूं आपकी दोस्त शगुफ्ता गांधी। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो है वक्त का सही इस्तेमाल। तो हमें वक्त का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? तो क्या है कि वक्त जो है अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नियामत बनाई है हमारे लिए। वक्त एक ऐसा खजाना है जो एक बार चला गया तो बार बार वापस नहीं आता है। अगर हम अपना वक्त पढ़ाई, खेल, इबादत और अच्छे कामों में सर्व करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन अगर हम वक्त को फजूल बातों, मस्ती और खेल कूद में हद से ज़्यादा ज़ाया करेंगे तो हमें पछताना पड़ता है। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम हर दिन का मंसूबा बनाएं और अपने वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। गुजरा हुआ लम्हा दोबारा नहीं मिलता। किसान वक्त पर बीज ना बोए तो फसल खराब हो सकती है। तालिब इल्म वक्त ज़ाया करे तो इम्तिहान में क्या हो जाता है? नाकामयाब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं वक्त तलवार की मानंद है, अगर तुम उससे ना काटोगे तो वो तुम्हें काट डालेगा। दिन का आगाज ही टाइम टेबल बना कर करें। पढ़ाई, खेल और आराम सब का वक्त मुकर्रर रखें। मोबाइल, टीवी और दोस्तों के साथ बेमकसद गपशप मैं अपना वक्त ज़ाया ना करें। आपको पता चला होगा कि मैंने वक्त के बारे में जो आप बच्चों को समझाया, तो क्या समझाया मैंने आपको?
2: जी मैम, जैसा कि आपने अभी हमको कहा कि वक्त हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी नियामत है जो हमको अल्लाह ने दी है। हमको अपना वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भले ही हम खेल कूद करें और टीवी वगैरह देखें, लेकिन हमको हर काम वक्त के मुताबिक करना चाहिए। और किसी ने क्या खूब कहा है कि गुजरा हुआ ज़माना या वक्त दोबारा वापस नहीं आता।
0: बहुत खूब, सच में गुजरा हुआ वक्त जो है वो वापस नहीं आता है।
3: सही कहा आपने। जब हम स्कूल से आते हैं तो हम अपना बैग छोड़ते हैं पीछे और कहते हैं कि हम बाद में करेंगे, और जब वो टाइम आता है हम फिर से कहते हैं कि बाद में करेंगे, फिर वो वक्त कभी नहीं आता। इसलिए हमें अपना काम वक्त पर करना चाहिए। बाद में हम खेलें, कूदें, सब कुछ करें, लेकिन अब उसके साथ साथ काम भी करना चाहिए अपना।
0: जी बिल्कुल, वक्त को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। और आज के दौर में वक्त बहुत कीमती है। वक्त इतना ज़्यादा कीमती हो गया है कि अगर हम वक्त को थोड़ा सा भी मतलब गलत इस्तेमाल करें तो हम गलत चीज़ों में मुलाविस हो सकते हैं। इसलिए वक्त से हमें क्या करना है? वक्त पर पढ़ाई करनी है, वक्त पर खेल कूद करना है, वक्त पर हमें हर काम करना है। जैसे आप एक टाइम टेबल बनाते हो कि हमें, जैसे साइंस का हमने बना के रखा होता है टाइम कि हमें 10 बजे साइंस तैयार करनी है, 11 बजे मैथ तैयार करना है, SST तैयार, मतलब उसका एक वक्त होता है जो एक शेड्यूल आप बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो उसी में फिर आप उस टाइम टेबल के मुताबिक अपने वक्त को उसमें एडजस्ट कर दो। खेल कूद में अपना टाइम ज़ाया मत करो। तो बच्चों, हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आपको तो पता है कि कुछ बच्चे कहानियाँ लाते हैं, कुछ नज़में लाते हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक्स लाते हैं, छोटे छोटे बच्चे नज़में, पोएम्स वगैरह सुनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम और बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो पहले बात करते हैं हम एक बच्चे से। क्या नाम है बेटा आपका?
4: समी।

0: मम्मी क्या लेकर आए हैं आप?
1: टॉपिक
0: आपका बेटा किस चीज़ पे है?
1: मेरा स्कूल। जिस जगह तालीम हासिल की जाती है उसे स्कूल, ये शहर के वास्ते में वाकया है। मेरे स्कूल में 15 कमरे हैं। मेरे स्कूल में 15 असातिज़ा पढ़ाने का काम करते हैं। मेरे स्कूल में 200 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। मेरे स्कूल में 2 खेल के मैदान भी हैं। मेरे स्कूल में अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी और अरबी भी पढ़ाई जाती है। पढ़ाई के अलावा बच्चों को जिस्मानी वर्जिश और खेल कूद भी सिखाई जाती है। मुझे अपने स्कूल पर नाज है।
0: बहुत अच्छा टॉपिक आपने अपने स्कूल के बारे में बताया। तो बेटा, जो आपने यहाँ स्कूल के बारे में बताया, क्या ये सब वहाँ पे मौजूद है? चलिए, बहुत अच्छा है। तो फिर आपका स्कूल बहुत अच्छा है कि वहाँ पे आपको हिंदी भी पढ़ाते हैं, अरबिक भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, सब कुछ, हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो चलिए, आपके दोस्त बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि आपको समी का टॉपिक कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा।
0: तो हम तालियां। तो चलिए बात करते हैं एक और बच्चे से, छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका?
3: जैद।
0: क्या लेकर आए हैं आप?
3: किसानों का गीत।
0: चलिए, आजकल तो वैसे ही किसान भाई अपना वो काम काज शुरू कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम उनका शुरू हो गया है, और आज आपने किसानों का गीत लाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो किसान भाई हमारा प्रोग्राम सुनेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा कि एक छोटा सा बच्चा किसानों का गीत लेकर आया है। सुनाइए।

0: आगे तो मिट्टी से सोना उगलाए बढ़ाते चलेंगे, जमाने की बिगड़ी बनाए चलेंगे, जमीनों पे जब हल चलेंगे तो मिट्टी से भी सोना उगाते चलेंगे, नशा भूख का मिटाए चलेंगे।
1: बहुत अच्छा, आपने किसानों का गीत लाया था। थोड़ा आप थोड़ा सा आपको गले की प्रॉब्लम की वजह से ये साफ़ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा था। आपके दोस्त बैठे, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको किसानों का गीत कैसा लगा।
2: बहुत अच्छा,
1: तालियां हो जाए। तो बच्चों, आपको तो पता है कि प्रोग्राम के बीच में हम एक नगमा सुनवाते हैं, तो पहले हम एक नगमा सुनते हैं, उसके बाद हम वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो चलिए सुनते हैं नगमा।

0: तो कैसा लगा नगमा आपको?
1: बहुत अच्छा।
0: अच्छा लगा तो उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम घर बैठे बच्चे सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगा होगा। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं एक और छोटे से बच्चे से। क्या नाम है बेटा आपका?
2: महर।
0: महर क्या लेकर आए हैं?
2: गुड फूड हैबिट।
0: सुनाइए।
2: वी शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल। वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग देम। वी शुड ड्रिंक plenty of water. We should chew our food properly. We should wash our hands before and after taking food. We must have our meals at fixed time. We should avoid junk food like samosa, pizza, burger, etc.
0: बहुत अच्छा आपने फूड इसके बारे में बताया, गुड फूड हैबिट्स के बारे में बताया कि हमें कौन सा खाना कैसे खाना चाहिए हमें सही में है कि आजकल देखिए जब भी आप देखोगे हर बच्चा बीमार है, जुकाम बुखार गले में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब इसी की वजह से होते हैं। जब हम फ्रूट्स वगैरह लाते हैं तो हम उनको बगैर धोए ही खा लेते हैं जिसकी वजह से बच्चा बीमार पड़ सकता है। तो आपकी जो छोटी सी बहन है जिसने यहाँ पे आपको बताया कि हमें क्या करना चाहिए।

0: जब भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी लाएं पहले उनको वॉश करें, उसके बाद उनको खाएं और प्रॉपरली च्यू करें, उनको अच्छे से चबाएं ताकि वो जब हमारे अंदर पेट में जाते हैं तो वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक लाया था और बहुत अच्छी तरीके से सुनाया भी, तो इसके लिए ज़ोर से तालियां हो जाएं। चलिए बात करते हैं एक और बच्चे से। क्या नाम है बेटा आपका, क्या लेकर आए हैं आप?
1: माँ बाप की खिदमत।
0: माँ बाप की खिदमत, सुनाइए माँ बाप की खिदमत।
1: माँ बाप को खुश रखे, उनकी खिदमत करे, उनकी बात माने, जो काम करने को कहे वो खुशी से कहे करे, उनसे लड़ाई मत करना, उनसे लड़ाई मत करो, उनसे अदब से बात करो, उनसे जोर जोर से मत बोलो, उनकी उनके पैरों के नीचे
0: जन्नत है। बहुत अच्छा टॉपिक था माँ बाप की। आपने माँ बाप की क्या लाया था, खिदमत। हाँ, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, माँ बाप का कहना मानना चाहिए। आजकल के बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं?
2: यस
0: मैम। बहुत कम धीमी आवाज़ है, मानते हो?
3: यस मैम।
0: हाँ, ऐसे होना चाहिए ना, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, माँ बाप की इताअत करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही ऐसे हैं जो तुम्हें यहाँ तक, जिन्होंने तुम्हें पहुँचाया है ना। तो माँ बाप की बहुत खिदमत करो, बहुत इज्जत करो उनकी। माँ बाप के साथ ज़ोर से बात मत करो, बिल्कुल धीमी आवाज़ में माँ बाप के साथ बात करें। चलिए, मलिया का टॉपिक कैसा लगा आपको?
3: बहुत अच्छा।
0: तालियां हो जाए। क्या नाम है बेटा आपका?
4: देवांग ठाकुर।
0: क्या लेकर आए हैं आज?
4: नशे को कहना।
0: सुनाइए।
4: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो है से नॉट टू ड्रग्स, यानी नशे को ना कहें। आज के समय में नशा एक बड़ी समस्या बन चुका है, खासकर युवाओं के बीच। लोग अक्सर जिज्ञासा या दोस्तों के दबाव में इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये जल्दी ही खतरनाक लत बन जाती है। नशा शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है और व्यक्ति के भविष्य को भी खराब कर देता है। इसका अक्सर समाज और परिवार पर भी पड़ता है, इसलिए हमें नशे से दूर रहना चाहिए और एक स्वस्थ और सफल जीवन के लिए दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इफ़ यू क्वाइट फॉर अ डे, यू कैन क्वाइट फॉर अ लाइफ टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
0: बहुत अच्छा। हाँ तो बच्चों, आपको तो पता है कि नशा क्या है। हर प्रोग्राम में हम आपको यही बताते हैं कि नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, जो गवर्नमेंट्स ने भी उस पर स्टेप्स उठाए हैं, उनका भी चल रहा है, उनका अभियान अभी भी चल रहा है। कुछ बच्चों को पकड़ा भी है, कुछ को अभी भी मतलब सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जो यहाँ पे नशा फैला रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पुलिस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप अभी बहुत छोटे बच्चे हो, लेकिन छोटे बच्चों को ही उजागर, मतलब बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को ही उजागर करना है कि इन चीज़ों से आप बच्चे दूर रहें। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई दोस्त आपको, बड़ा कोई दोस्त आपको कोई टॉफ़ी देता है, कोई कुछ भी देता है, तो उसको अवॉइड करें, उसको मत पकड़ें, क्या पता उसमें क्या हो, है ना। आज ऐसा माहौल हुआ है कि बच्चों को टॉफ़ीज़ खिलाते हैं, उनमें भी कोई ना कोई हो जाता है, जिससे बच्चे को ये लगता है कि मुझे, मैं बार बार ऐसी चीज़ खाऊं। इसलिए किसी से कोई भी चीज़ आप मत पकड़े। जो आपके दोस्त बैठे हैं देवान ठाकुर, इन्होंने बहुत अच्छा नशे पे बताया, तो कैसा लगा आपको?
3: बहुत अच्छा।
0: तो हम बजाएं तालियां दोबारा से। चलिए बात करते हैं एक और बच्चे से। बेटा आपका नाम क्या है?
5: मिसबा।
0: मिसबा, क्या लेकर आए हैं आप?
5: टॉपिक।
0: किस चीज पे टॉपिक है?
5: उस्ताद पे।
0: सुनाइए।
5: अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। तालिब इलम और उस असतिज़ा का रिश्ता पाकिज़ा होता है, उस्ताद वो है जो गुमन को यकीन में बदल देता है, उस्ताद बंजरे ज़मीन को खलियान बना देता है, उस्ताद वो है जो पत्थर को तलाश कर हीरा बना देता है, उस्ताद वो है जो जुल्मत के शौकों को रंग बदल देता है। ये महरे तैबा से जाके कह दो कि अपने किनारों को गिन के रख दे, ये महरे तैबा से जाके कह दो कि अपने किनारों को गिन के रख दे, मैं अपने सहरे को जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रही हूँ। मेरे साथियों, ईमान गजाली फरमाते हैं कि हकीकी बाप मुझे आसमान से ज़मीन तक पहुंचा देते हैं, लेकिन मेरे रूहानी वालदैन ज़मीन से उठाकर आसमान की बुनियादी तक पहुंचा देते हैं।

0: हैं। अब मैं आखिर में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि जितना सूरज को चमक, चांद को दमक और फूलों को महकने की ज़रूरत होती है, उसी तरह माशरे को उस्ताद की ज़रूरत होती है। मैं अपने असातिज़ा के लिए एक शेर पेश करना चाहूंगी कि पेशामे रूह है, पेशामे तू है ईमान, पेशामे रूह है, पेशामे तू है ईमान, तेरी अजमत तेरी रफ़त को सलाम, ऐ मेरे उस्ताद तू है जीशान, तेरी अजमत तेरी रफ़त को सलाम। थैंक यू।
1: बहुत अच्छा आपने उस्ताद के बारे में बताया, और जितना आपने बताया ये बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने उस्ताद के लिए इतना कुछ लिखा है, उनकी इज़्ज़त आपने बहुत ज़्यादा दी है इस अपने इस छोटे से टॉपिक में। तो आपके दोस्त बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा लगा आपको मिसबा का टॉपिक?
2: बहुत अच्छा।
1: तो हम तालियां बजाएं। चलिए बात करते हैं एक और बच्चे से। क्या नाम है बेटा आपका?
3: रिहान।
1: रिहान, क्या लेकर आए हैं आप?
3: टॉपिक।
1: किस चीज़ पे टॉपिक है?
3: दिवाली।
1: सुनाइए टॉपिक।
3: दिवाली हिंदुओं का एक अजीम त्यौहार है। ये त्यौहार दीपावली और रोशनियों के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार नवंबर के शुरुआती या अक्टूबर के आखिरी हफ्तों में मनाया जाता है। ये त्यौहार श्री रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास को पूरा करने और रावण को एक बहुत बड़ी जंग में हरा कर लंका को फतेह करने की खुशी में मनाया जाता है। दिवाली की आमद आने से पहले ही लोग घरों की और दुकानों की सफाई में लग जाते हैं। दिवाली की रात लोग घी के चिराग जलाते हैं। दौरे हाजिर में लोग बिजली से चलने वाली मालाओं का इस्तेमाल करते हैं। दिवाली के दिन लोग बड़े मकानों और दुकानों को इस तरह सजाते हैं कि लगता है कि सारे तारे ज़मीन पर उतरकर रौनक अफरोज हो रहे हैं। ताजिर हजरात इस मौके पर नए खाते शुरू करते हैं। लोग इस दिन लक्ष्मी देवी को खुश करने के लिए लक्ष्मी पूजा करते हैं। दिवाली के मौके पर लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बाँटते हैं। इस रात बम पटाखे फुलझड़ियाँ जलाई जाती है। बच्चे रात गए तक पटाखे जलाते रहते हैं। दिवाली से हमें ये सबक मिलता है कि वालिदैन का हुक्म औलाद पर फ़र्ज है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है।
1: बहुत अच्छा टॉपिक लाया आपने दिवाली पे। तो आपके दोस्त बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको दिवाली का टॉपिक कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा।
1: तो तालियां हो जाएं। चलिए बात करते हैं एक और बच्चे से। बेटा आपका नाम क्या है? आप क्या लेकर आए हैं
4: टॉपिक?
1: किस चीज पे?
4: नशा।
1: सुनाइए।
4: नशा एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे इंसान की सेहत, करियर, खानदान सब कुछ खत्म कर देती है। ये सलूशन नहीं, प्रॉब्लम की शुरुआत है। इसे दूर रहने में ही समझदारी है। अगर कोई ऐसे भावा में शामिल है तो उसकी मदद करो, उसे सीधा रास्ता दिखाओ, नशा छोड़ो, जिंदगी जोड़ो।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने भी लाया है नशे पे कि सच में खानदान के खानदान इसमें तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। जब कोई बच्चा, जवान बच्चा नशे की हालत में होता है, उसकी मौत हो जाती है, वो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके घर वालों के लिए कंटिन्यूसली वो मौतें आ जाती हैं। हर दिन उनके लिए मौत होती है, मौत होती है, क्योंकि वो बच्चा जब उनके सामने नहीं होता है। तो पहले भी मैंने आपको कहा कि नशे से हमें दूर रहना चाहिए, और आपको मैं फिर से बताती हूँ कि नशा करने वालों को अगर आप कहीं देखते हो, आप अभी बहुत छोटे हो लेकिन फिर भी पता तो चलता है, अगर आप 3-4 बच्चों को देखते हो कभी सिगरेट हाथ पे या कुछ, तो अपने आसपास के जो बड़े लोग हैं उनको जाके बता दो कि फलानी जगह 2-4 बच्चे खड़े हैं और वो सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे, कुछ भी। तो छुपाना नहीं है, चाहे वो आपका अपना दोस्त ही क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, आपके महलेदार क्यों ना हो, लेकिन ये बात उनके घर तक ज़रूर पहुंचा दो कि आपका बच्चा हमने रास्ते में या अपने गली के किनारे पे या कहीं नुक्कड़ पे हमने उसको देखा है, वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था, बीड़ी पी रहा था या और कुछ कर रहा था। तो उनके घर तक ये पैगाम पहुँचा दो ताकि अभी शुरुआत है तो वो उसको बचा सकेंगे। तो भजिया का टॉपिक आपको कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा।
1: तालियां हो जाए। चलिए बात करते हैं एक और बच्चे से। क्या नाम है बेटा?
5: आमिना।
1: हाँ, सुनाइए क्या लाई है आपने? दुआ। चलिए पढ़िए दुआ।
5: खुदाया जिस रोशन है तारे, उन्हीं जैसी मुझे भी रोशनी दे, मिला फूलों को जैसे रंग बबू है, मेरे दिल को भी उसकी आरजू है, महकते फूल है गुलशन میں جیسے میرے مولا مجھے ویسے مہک دے، مجھے ایمان کی دولت عطا کر، خدایا عزت و رفعت عطا کر، اگر کچھ تمنا ہے بس یہی ہے، میرے جینے کا منشا بس یہی ہے۔
1: بہت اچھی دعا لائی ہے آپ نے، تو مجھے امید ہے کہ آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو کیسا لگا آپ کو آمنہ کی دعا؟
2: بہت اچھی،
1: تالیاں ہو جائیں۔ تو بچوں جاتے جاتے آپ کو ایک اور نغمہ سنواتے ہیں، اس کے بعد ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت۔

0: तो कैसा लगा नगमा?
1: बहुत अच्छा।
0: तो दीजिए अपनी मेजबान शगुफ्ता को इजाजत, खुश रहे, आबाद रहे और
1: अपने
0: आसपास को
1: साफ रखें।

सामिनाव आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम गुलदस्ता। हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। सामिन कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे हालात वाकत पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन, 7:30 पर कश्मीरी में खबरें, 7:40 पर उर्दू में खबरें और रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज़ आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा। रिले का ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

0: 스리나간.
1: अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
2: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कनात की तजवीज तेजी से रूबामल लाई जा रही है। वादी में बिजली के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के इकदाम। आबी ट्रांसपोर्ट को नई जिला अदा करने का मंसूबा। और डिजिटाइज्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड में कई सुकम। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ,
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 9018074333।
7: 9018074333।
8: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मैंने शरीर से विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
9: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करा?
8: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
9: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान, तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
8: मगर ये है आज सठा द्रो?
9: हाँ ना ना, सुई कम मत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
10: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहत मंत प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस मज दस्तिया फोर्टिफाइड वसाइलन है जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप तक।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
12: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग्स सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
13: पर क्या कर सकते हैं?
12: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहाँ सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
14: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक।

0: हैरेसमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
1: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
0: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: शर्मिन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। सभी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र तवानाई की सलामती को मजबूत बनाने के एक अहम एजेंडे के साथ आज 6 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुए। वज़ीरे के मौसूफ मुतहदा अरब अमारात समेत 4 यूरोपीय ममालिक नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड और इटली का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने यूएई दौरे को निहायत बामकसद करार देते हुए कहा कि इससे हिंद यूएई हमजहत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म मौसूफ के बकौल तवानाई, दिफा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग और जदीद टेक्नोलॉजी समेत कई अहम शोबों में आज बड़े माहदों को हतमी शक्ल दी गई, जबकि यूएई की जानिब से भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान दोनों मुल्कों के इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। इधर मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 3 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जो गुज़श्ता 4 बरस के दौरान पहली बड़ी बढ़ोतरी करा दी जा रही है। नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये और डीजल 90.67 रुपये फी लीटर हो गया है, जबकि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत दीगर बड़े शहरों में भी नरखों में इजाफा कर दिया गया है। जराए के मुताबिक खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे, मशरक के वस्ता में जारी कशीदगी और रिफाइनरी शोबे पर माली दबाव पड़ने के बाद से फैसला लिया गया है। माहरीन का कहना है कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और अशियाई जरूरिया की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होने का खदशा है। इसी दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुल्कगीर ईंधन बचाव मुहिम के तहत कई अहम इकदाम का ऐलान किया, जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत, जज साहिबान के दरमियान कार पूलिंग और रजिस्ट्री अमले के लिए वर्क फ्रॉम होम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक मुतफर्क समाअत वाले दिनों में मुकदमात की समाअत अब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी, जिसके अलावा रजिस्ट्री के हर शोबे के 50% तक के मुलाजमीन को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की इजाजत दी जाएगी। सर्कुलर में मजीद कहा गया है कि अदालती उमूर में खलल ना आए इसके लिए लाजमी अमला दफातर में मौजूद रहेगा, जबकि जज साहिबान ने ईंधन की बचत के पेश नजर कार पूलिंग को फरोग देने का भी इत्तेफाक कर लिया है। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किदा वजारती काउंसिल के इजलास में श्रीनगर के लिए 93 करोड़ रुपये की मालियत के बिजली के बुनियादी ढांचे के मनसूबों को मंजूरी दी गई है। इजलास में जैनकोट ग्रिड सब स्टेशन की सलाहियत 450 एमवीए से बढ़ाकर 780 एमवीए करने की मंजूरी दी गई, जिस पर तकरीबन 67.66 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसके अलावा 132 केवी पांपुर, रावलपुरा और रावलपुरा बेमिना ट्रांसमिशन लाइनों की अपग्रेडेशन के लिए 25.47 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक इन मंसूबों का मकसद श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में बिजली के निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाना, ट्रांसमिशन सलाहियत में इजाफा करना, बिजली की खलल अंदाजी को कम करना और सार्फिन को ज्यादा काबिल एतमाद बिजली निजाम फराहम करना है। ये मंसूबे खुसूसन ज्यादा लोड के दौरान ग्रिड के इस्तेहकाम और बढ़ती हुई बिजली की तलब को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। अब एक और मौसू समन वाजी कश्मीर, बिलखसूस श्रीनगर शहर में हर गुजरने वाले दिन के साथ सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव इस कदर बढ़ रहा है कि लोग सफर करने में खौफ महसूस करने लगे हैं। वाजिर है कि 4 मई को दरबार मुख्य दफातर श्रीनगर मुंतकिल होने के बाद से श्रीनगर और मजाफात की सड़कों पर ट्रैफिक में होशरुबा इजाफा हुआ है, और जिस एतबार से रोजाना नई नई गाड़ियां सड़कों पर उतारी जा रही हैं, उससे यह अंदाजा लगाना चंदा नामुमकिन नहीं कि शहर की सड़कों पर ट्रैफिक एक आसीब की शक्ल इख्तियार करेगा। रही बात जम्मू शहर की, तो वहां की हालत इससे भी गैर है। ऐसे में हुकूमत का यह फैसला कि वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन में हसब जरूरत आबी ट्रांसपोर्ट को बड़े पैमाने पर जिला बख्शी जाएगी, यकीनन काबिल सताइश है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सदारत में एक आला सतही मीटिंग में फैसला लिया गया है कि वादी में दरियाए जेहलम पर पंथ चौक से लेकर वुलर तक लगभग 76 किलोमीटर तवील एक वाटर ट्रांसपोर्ट सर्किट कायम किया जा रहा है। इसी तरह जम्मू में भी वाटर

0: ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की काविशें शुरू हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
1: जम्मू कश्मीर में जल्द इनलैंड ट्रांसपोर्ट यानी आबी नकलो हमल खिदमात शुरू होने जा रही है, जिसके तहत दरियाई जहलम, चिनाब और रावी में जदीद क्रूज और वाटर ट्रांसपोर्ट निजाम कायम किया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं। इस मनसूबे का मकसद माहौल दोस्त सफरी सहूलियात, सयाहत को फरोग देना, रोजगार के मौके पैदा करना और दरियाओं के किनारे नई मुआशी सरगर्मियों को बढ़ाना है। हुकाम के मुताबिक दरियाए जहलम पर नेशनल वाटरवेज 49 के तहत पांथा चौक से वुनर झील तक तकरीबन 76 किलोमीटर तवील रिवर क्रूज कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस रूट पर 8 फ्लोटिंग जेटीज तामीर की जा रही है, जिनकी तकमील जुलाई 2026 तक मुतवक्का है, जबकि मुतालिका जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर जुलाई 2027 तक मुकम्मल किया जाएगा। दरियाए जहलम में महफूज किश्ती रानी के लिए ड्रेजर्स के जरिए दरिया की सफाई और गहराई बरकरार रखने का काम भी जारी है, ताकि सफर बगैर रकावट जारी रह सके। मनसूबे के तहत 20 मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाले हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट्स भी खरीदी जा रही है। इन कश्तियों का कॉन्ट्रैक्ट मई 2026 तक अलॉट होने और मार्च 2027 तक इनकी फराहमी मुतवक्का है। जम्मू खिते में दरियाए चिनाब पर नेशनल वाटरवेज 26 के तहत रियासी से अखनूर पोर्ट तक तकरीबन 9 किलोमीटर तवील क्रूज कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जहां 2 जेटीज की तामीर जारी है। इसी तरह दरियाए रावी पर नेशनल वाटरवे 84 के तहत जम्मू के सुहिर इलाके में 15 किलोमीटर तवील रिवर क्रूज कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जहां जेटी तामीर और नेविगेशन सहूलियात पर काम जारी है। वाजह रहे कि गुज़श्ता रोज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने एक आला सतही इजलास में इन मंसूबों की पेशरफ्त और मुस्तकबिल के रोड मैप का जायजा लिया है। इजलास में IWAI, ASCS, PWD के चेयरमैन सुनील पालीवाल, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और IWAI हुकाम ने शिरकत की। इजलास में पुलों के नीचे कॉफर डैम्स हटाने, ST और LT बिजली लाइनों को बुलंद करने, टर्मिनल्स पर बिजली व पानी की फराहमी, राबता सड़कों की तामीर और अहम घाटों पर सीवरेज ट्रीटमेंट सहूलियात, दरख्तों की कटाई और दीगर तामीराती इजाजत नामों से मुतालिक मामलात पर भी तफसीली गौर किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए IWAI के साथ करीबी तालमेल रखा जाए। उन्होंने कहा कि जदीद आबी ट्रांसपोर्ट निजाम न सिर्फ एक पायदार सफरी सहूलियात फराहम करेगा, बल्कि सयाहत को फरोग देने, रोजगार पैदा करने और दरियाओं के किनारे नई माशी सरगर्मियों के कयाम में भी मददगार साबित होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आबी ट्रांसपोर्ट मनसूबों को सयाहती इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मरबूत किया जाए और इस दौरान दरियाओं के कुदरती माहौल, खूबसूरती और माहौलियाती हसासियत का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। इजलास में यह भी बताया गया कि मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 11 अराजी के टुकड़ों की निशानदेही की जा चुकी है और इनकी मंजूरी व मुंतकली का अमल मुख्तलिफ मराहिल में जारी है।
0: इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के पेपर लीक तनाजे के दरमियान दोबारा इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया है। इत्तिलात के मुताबिक नीट UG 2026 का री एग्जामिनेशन 21 जून 2026 इतवार को मुनाकिद होगा। NTA ने तलबा और वालदेन से अपील की है कि वो सिर्फ इदारे के सरकारी जराये से जारी इत्तिलात पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों से ध्यान देने से गुरेज करें। वाजह है कि पेपर लीक और इम्तिहानी बेजाबतगियों के बाद मुल्क भर में शदीद रद्द अमल सामने आया है, जबकि कई उम्मीदवारों ने मामले की शफाफ तहकीकात और मनसूखी के मुतालबे को लेकर अदालतों से भी रुजू किया था। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ

0: रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: एक बार ट्राई करके तो देख, तू डरता है? कुछ नहीं होता, किसी को पता नहीं चलेगा।
2: नशा किसी भी तरह का हो, एक बार इसकी लत लग जाए तो इतनी आसानी से नहीं छूटती। नशा सिर्फ आपका जीवन ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि ये आपके परिवार, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल, आपके फ्यूचर को अंधकार में ले जाएगा।
3: क्यों? सुन के डर लगा ना? अभी भी देर नहीं हुई है, आप अब भी नशे को छोड़ सकते हैं और जिंदगी से फिर से अपना नाता जोड़ सकते हैं। से बाय बाय टू ड्रग्स एंड हाई टू गुड लाइफ।
4: तो आइए आज से हम सब मिलकर खुद को, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को, अपने जिले, अपनी यूटी को नशा मुक्त बनाने का प्रण लें और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
3: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
5: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। बीजेपी की कश्मीर यूनिट के कई लीडरान और कारकुनों को आज उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वादी कश्मीर में शराब की फरोख्त पर पाबंदी आयद किए जाने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहायशगाह की जानिब मार्च करने लगे। इतिलात के मुताबिक बीजेपी कारकुन और लीडरान राम मुंशी बाग सोनाबार में जमा हुए और शराब की खरीद फरोख पर मुकम्मल पाबंदी के मुतालबे के साथ गुपकार की जानिब मार्च करने की कोशिश की। बीजेपी का कहना है कि एहतजाज का मकसद वादी में शराब की दुकानों के खिलाफ अवामी जज्बात को उजागर करना था। पार्टी ने हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शराब नोशी की हिमायत का इल्जाम भी आयद किया है। आज वेसु काजीगुंड में पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में बासी शब्बीर वलद शब्बीर अहमद साकिना काकपुरा नामी नौजवान जामहक हुआ। इतिलात के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क किनारे नस्ब बैरिकेड से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। उधर बानिहाल की हाड़बेर कसकोट राबेता सड़क पर पेश आए एक दिलदोज सड़क हादसे में एक 14 साल का लड़का जांबहक हुआ, जबकि हादसे के बाद इस लड़के को टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। मुतवफ्फी की शनाख्त हुजैफ मंजूर वलद मंजूर अहमद के तौर पर हुई है। दरियास में बड़गाम के बीरवा इलाके में हयातपुरा मेन लिंक के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया, उसकी शनाख्त हारिस मजीद साकिना गोंदीपुरा बीरवा के तौर पर हुई है। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इतला है कि पाडर रोड पर एक ऑल्टो गाड़ी और मोटरसाइकिल के माबैन टक्कर हुई, जिसके नतीजे में दो अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, उन्हें जिला अस्पताल किश्तवाड़ में दाखिल किया गया है। सदन पीएमजीएसवाई महकमे ने अगरचे इमसाल वादी के मुख्तलिफ जिलों में सड़कों की तामीर तरदीद और मरम्मत का काम दरदस्त लिया हुआ है, ताहम वादी के दर्जनों इलाकों से ये शिकायत मौसूल हो रही है कि महकमे ने उनके साथ किया गया वादा पूरा नहीं किया और उन्हें एहतमाल है कि इस साल भी वो खस्ताहाल सड़कों का सफर करने को मजबूर होंगे। इस सिलसिले में त्राल से शब्बीर भट्ट का कहना है कि इलाके के लगभग एक दर्जन देहात में सड़कों की खस्ताहाली पीएमजीएसवाई की फौरी तवज्जो का तकाजा करती है। मुतल्लिका आबादी के बकौल महकमे ने अगर त्राल के दीगर कई देहात में इस साल तामीर तजदीद का काम शुरू कर लिया है, ताहम उनके साथ की जाने क्यों कुछ अलग सलूक किया जा रहा है। तफसीलात के साथ त्राल से खुद शब्बीर भट्ट।
6: जहाँ एक तरफ सरकार दही इलाकों में जाम तरक्की के लिए बेहतर आज सड़कों का मनसूबा बना रही है, जिसे दूर दराज दही इलाकों की आबादी टाउन और जिला हेडक्वार्टर्स के साथ जुड़ जाएगी। जम्मू कश्मीर के सब जिला त्राल में जहाँ इन दिनों बटनूर ब्रनवार शिदलन सड़कों पर महकमे पीएमजीएसवाई ने काम शुरू किया है, ताकि अनकनेक्टेड आबादियों को सड़क रब्ते के जरिए जोड़ा जाए। इसे अवामी हल्के दे राय दुरुस्त आयद के मिजदाक एक बेहतर कदम तस्वर कर रहे हैं। तहम कई इलाकों में अब भी रब्ता सड़कों की खस्ताहाली या तजीज मरम्मत के लिए इकदाम न किए जाने से मुतलका आबादी को अबूर मरूर में जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टाउन ताल से पिंगलिश बराज से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाने वाली सड़क की खस्ताहाली के हवाले से भी महकमा कोई कारगर इकदाम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पिंगलिश श्रीबुक शिकारगा और मजाफाजी देहात की हजारों आबादी को मुश्किल का सामना है। इसी तरह नाजिमपुरा से पनर जागीर को जाने वाली सड़क की खस्ताहाली पिछले एक दहाई से आवाम के लिए सुहानी रूह बनी हुई है, ताहम न जाने क्यों कर इस जानब महकमा तवज्जो देने से गुरेजा है। इसी तरह अमीराबाद से नई बुक जाने वाली अहम सड़क नाकाबिले आमद रफ्त बन गई है और कई मकाम पर तो हरीस अनासिर ने सड़क को नुकसान भी पहुंचाया है। ताहम इस सड़क की तमीर तजदीद और नगरम मजीन के हवाले से आरंडी महकमा इकदाम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से अमीराबाद नई बुक नौदा लाल

0: और मगाफा की बस्ती के लोग मुश्किलात से दो चार है। यही सूरत हाल दारसर नवदल सड़क की बताई जा रही है, जहां सड़क जगह जगह टूट फूट की शिकार हो गई है, जबकि गुजर बस्ती गुलशनपुरा पतहाट दारसर लाडियार सड़क, चौधरी गांव अमलर सड़क, बारा गांव बोहवन सड़क और दीगर कई अहम सड़कों की हालत खराब होने से आवाम को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। लतपुरा से खेव जाने वाली सड़क भी इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से इस अहम और मसरूफ सड़क पर न सिर्फ मुसाफिरों को परेशानियों का सामना है बल्कि यहाँ पर चलने वाली गाड़ियों को भी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। अवामी हलकों का इल्जाम है कि मुतलका महकमा सड़कों की तजवीज और मरम्मत या मैकडमाइजेशन के हवाले से जो मनसूबा ब्लॉक दिवस या ग्राम सभाओं के जरिए अवाम के सामने मरतब करते हैं, फिर उन पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से अहमियत के हामिल सड़कें लंबे वक्त से तैमीर तजवीज या मैकडमाइजेशन के इंतजार में रहती है। त्राल की जुमला आबादी ने सरकार से मुतालबा किया है कि इलाके में खस्ताहाल सड़कों की हालत बेहतर बनाने के लिए ठोस इकदाम किया जाए ताकि आवाम को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
1: त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। समीन आकाशवाणी की नशरियात के 90 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में 12 मई को एक रंगारंग प्रोग्राम का इहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आज रात के 8 बजे दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से टेलीकास्ट की जा रही है, जरूर देखिएगा आज रात के 8 बजे दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से। डाक बंगला किश्तवाड़ में आज जिलाई सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी किश्तवाड़ प्यारेलाल शान की सदारत में संगठन सृजन अभियान के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में तैनात शुद सरबराह जाहिदा खान और मुजीब अली शेख ने मुहिम के अगराज मकासद और तंजीमी सरगर्मियों को मजबूत बनाने से मुतालिक तफसीली जानकारी फराहम की। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर अहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की और तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के अजम का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में जमीन का रिकॉर्ड अजसर नौ मुरतब करने और इसे उर्दू से अंग्रेजी में मुंतकिल करने का अमल खासे वक्त से चल रहा है, लेकिन इस अमल में कई सारी खामियां पाई जा रही हैं जो कि मुस्तकबिल में बड़ी परेशानी का मोर्चे बन सकती हैं। जम्मू कश्मीर में जमाबंदी का नया अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है और इस अमल में भी ढेरों गलतियां सरजद हो चुकी हैं जिन्हें पहली फुर्सत में दूर करने की जरूरत है। इसी तनाजुर में एक रिकॉर्ड के साथ कुलगाम से फारूक राठौर।
2: वादी के दीगर अजला की तरह जिला कुलगाम में महकमा माल की जानिब से पठार रिकॉर्ड को उर्दू से अंग्रेजी में मुंतकिल करने का अमल जिस अंदाज और रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है उससे बज़ाहिर जदीदियत और शफाफ तर्ज हुकुमरानी की जानिब एक मुस्बित कदम के तौर पर पेश किया जा रहा है। ताहम जमीनी सतह पर सामने आने वाले हकायक इस दावे की नफी करते नजर आ रहे हैं। जहां कुलगाम के तमाम इलाकों तिवसर नूराबाद होमशालीबू काजीगुंड और इलाका कुंड के साथ साथ दीगर तहसील सदर मकामात में यकसान नवीयत के मसाइल ने इस पूरे अमल को एक संजीदा सवालिया निशान खड़ा किया है। ये बात नहायत तशवीशनाक है कि नए अंग्रेजी रिकॉर्ड में खेवट जैसा बुनियादी और अहम जुज जो जमीन की मिल्कियत और खानदानी वरासत की बुनियाद तस्वर किया जाता है कई जगहों पर या तो गायब है या गलत इंदराज किया गया है, जबकि खसरा नंबरों की गलतियों जमींदारों के नामों में तब्दीलियों और दीगर बुनियादी मालूमात की कमी ने इस मसले को मजीद पीचीदा बना दिया है, जिसके नतीजे में लोग अपनी ही जमीन की शिनाख्त के हवाले से शकूक शुबहात का शिकार हो रहे हैं और ऐसा निजाम जो शफाफियत लाने का दावेदार था खुद गैरयकीनी और बेएतमादी को फरोग देता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शजना नसब जैसे अहम जुज का रिकॉर्ड से गायब होना न सिर्फ एक इंतजामी खामी है बल्कि ये एक संगीन कानूनी और समाजी मसला भी है, क्योंकि यही अहम हिस्सा जमीन की खानदानी तारीख और वरासती तसलसल को वाजे करता है और इसकी अदमी मौजूदगी आइंदा नस्लों के लिए मिल्कियत के तयन को एक पीछीदा और मतनाजे अमल बना सकती है, जबकि वल्दियत जात और दीगर बुनियादी तफसीलात का अधूरा या गलत इंदराज इस सूरत हाल को मजीद उलझा रहा है। ये अमर भी बाइस तशवीश है कि इस नए निजाम को नाफिज करने से कबूल न तो मुतलक अहलकारों को मुनासिब तरबियत फराहम की गई है और न ही किसी मरहलावार हकमत अमली के तहत इस तब्दीली को नाफिज किया गया, जिसके नतीजे में वही अहलकार जो बरसों से उर्दू जबान में अपने फराइज अंजाम देते आए हैं अब एक ऐसे निजाम में काम करने पर मजबूर है जिससे वो मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर है और यही वजह है कि गलतियों का दायरा वसी होता जा रहा है। शहरदीन को जो मजीद तफसीलात फराहम हुए हैं उनके मुताबिक जिले में सेटलमेंट के अमल का अधूरा रह जाना इस पूरे मामले को मजीद संगीन बना रहा है। जब तक जमीन की जहदबंदी मिल्कियत की तस्दीक और दीगर कानूनी पहलू मुकम्मल न हो उस वक्त तक किसी भी रिकॉर्ड की हैसियत मशकूक रहती है और ऐसे हालात में मामूली

0: किया गया। बारामूला में मुनशियात के मुजर असरात से मुतलिक बेदारी पैदा करने के लिए पुलिस के अहतमाम से प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। जम्मू सूबे के रियासी जिले में सुरेश कुमार और जीवन लाल नामी मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। कठुआ में मुनीश कुमार जबकि उधमपुर में चेतन नामी ड्रग्स स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सांबा जिले के रामनगर में अब्दुल हबीब नामी ड्रग्स स्मगलर का रिहायशी मकान मिसमार किया गया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर कल यानी 16 मई को दस्तकारों और बुनकरों के लिए आंखों के अमराज की तशखीस के लिए एक मुफ्त भी कैंप का इनेकाद कर रहा है। ये कैंप कल सुबह 11:30 बजे IICT कैंपस बाग अली मर्दान खान श्रीनगर में मुनक्कद होगा। इस बारे में IICT के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: इसका मुद्दा मकसद ये कि हमारे आर्टिजन है, क्राफ्ट्समैन है, व्यूवर्स है, उनकी सेहत का खास ख्याल रखा जाए ताकि हम उनको यहाँ इंस्टीट्यूट ला के उनको एक बार चेकअप करवाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप है जहाँ पे हम एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप होगा, उसके साथ साथ जो मुफ्त दवाई दी जाएंगी इन केस कोई इशू निकलता है, इसके साथ साथ हम उनको 300 स्पेक्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे अगर कोई इंटरवेंशन की जरूरत है तो। ये पहला हमने कैंप स्टार्ट किया है इन कोलैबोरेशन विद फिक्की FLO। ये फिक्की की टीम आ रही है कल, उनके साथ हमारे 8 टेक्नीशियंस और डॉक्टर साहबन रहेंगे अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डॉक्टर JP सिंह। और टारगेट हमारा रहेगा 300 आर्टिजन्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देंगे और स्पेक्टिकल्स भी देंगे। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे कैंप्स करते रहेंगे जहाँ पे हम मैक्सिमम आर्टिजन को कवर करेंगे। द फर्स्ट इंस्टेंस 3 डिस्ट्रिक्ट से लिए है, श्रीनगर रहेगा, बड़गाम रहेगा और रहेगा गांधरबल।
0: अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौसर अंदाज में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकते हैं। अनंतनाग में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि मौजूदा सरकार खेल कूद को फरोग देने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। श्रीनगर में एक प्राइवेट स्कूल में मुनक्कदा इंटर स्कूल गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में शिरकत के बाद उन्होंने कहा कि खेल सरगर्मियां नौजवान नस्ल की जिस्मानी, जहनी और अखलाकी तरबियत में कलीदी रोल अदा करती हैं। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला और सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने साबिक वजीर बिजली मरहूम गुलाम हसन भट्ट और साबिक MLA मरहूम अब्दुलहद कार को उनकी बरसियों पर खराज अकीदत पेश किया है। प्रदेश BJP सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नजरियाती तहरीक से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी सियासी तंजीम बनकर उभरी है और ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कौम परस्ती, समाजी खिदमत और तंजीमी नज्म व जब्त के अजम का नतीजा है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत सांबा जिले में मुनजम किए गए जिला सतह के वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया। प्रदेश BJP की जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा ने कहा है कि ख्वातीन मजबूत कुंभों और तरक्की पसंद समाज की बुनियाद हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने मातृशक्ति नामी नज्म का इजरा करने के सिलसिले में मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। BJP के रियासती तर्जुमान डॉक्टर हरि दत्त शिशु ने जम्मू कश्मीर में 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान शुरू करने पर रियासती इंतजामिया खासतौर से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सराहना की है। श्रीनगर को लद्दाख से मिलाने वाली श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड को दोतरफा ट्रैफिक के लिए खोला गया है। इस सिलसिले में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से जारी की गई एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस सड़क पर आज से दोतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई। गांधरबल, द्रास और करगिल अजला के हुकाम से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में रोजाना की बुनियादों पर मौसम से मुतलिक एडवाइजरी को मलहूज नजर रखें। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इस सड़क पर मुनासिब खिदमात दस्तियाब रखने की भी हिदायत दी गई है। तेल कंपनियां आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर इजाफा करने का फैसला किया है। राजौरी जिले से ताल्लुक रखने वाले 14 बरस की उम्र के मोहम्मद यासिर जम्मू कश्मीर के पहले बॉक्सर बन गए हैं जिन्होंने अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। उन्होंने चैंपियनशिप के फाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोबे ने

0: इंडस्ट्री कनेक्ट मुहिम के तहत कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एरो थर्मल इंजीनियर तकवा कादरी के साथ मुलाकात की एक निशस्त का अहतमाम किया। इसका मकसद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को तदरीसी अमल और इंडस्ट्री के दरमियान राबते के बारे में जानकारी देना था। इस मौके पर तकवा कादरी ने अपने पेशावराना सफर और इस शोबे में अपने तजुर्बात के बारे में बताया। भारत की सदारत में नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास जारी है। इजलास के दूसरे रोज आज अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने कहा कि यह इजलास आलमी इस्तेहकाम के लिए अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी माली ढांचे में इसलाहात वक्त का तकाजा है। इससे कबल डॉक्टर एस जय शंकर ने ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची के साथ अलहदा मीटिंग की। उत्तर प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान बिजली चमकने, शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं के नतीजे में 111 अफराद की मौत वाका हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इस सूरतहाल से इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। रियासत में सड़क, ट्रांसपोर्ट और रेल खदमात भी मुतासिर हुई हैं। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 24.8 डिग्री, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35.4 डिग्री, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:29 और गुरुब आफ्ताब शाम 7:26 पर होगा। खास खास खबरों पर फिर एक नजर। वजीर अजम 5 मुल्कों के 6 रोजा दौरे के पहले मरहले में पहुंचे अबू धाबी। यूएई के सदर के साथ बाहमी दिलचस्पी के मामलों पर किया तबादला ख्याल। ज़ैनाकूट श्रीनगर में कायम 450 एमवीए गुंजाइश वाले ग्रिड सबस्टेशन की सलाहियत बढ़ाकर 780 एमवीए करने को वजारती काउंसिल की मंजूरी। नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऐलान और जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं आबिदा अख्तर। आलमी सियासत और मईशत इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां बैनुल अक्वामी तआवुन, सिफारती तवाजुन और मुश्तरका तरक्की की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी तनाजुर में दिल्ली में मुनक्कदा ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा की हालिया दो रोजा कॉन्फ्रेंस आलमी मंजरनामे में एक अहम पेशरफ के तौर पर देखी जा रही है। ये इजलास बदलती हुई आलमी तरजीहात, इक्तिसादी शराकत दारी और नई आलमी हिकमत अमली की अलामत बनकर सामने आया है। ये कॉन्फ्रेंस आइंदा होने वाले ब्रिक्स सरबरा इजलास की बुनियाद तस्वुर किया जा रहा है, जहां मुस्तकबिल की आलमी समत के कई अहम पहलू ज़ेर गौर आएंगे। आज दुनिया को जिन बड़े चैलेंजेस का सामना है उनमें इलाकाई तनाजात, माशी अदम तवाजुन, तवानाई का बहरान, माहौलियाती तब्दीली, समंदरी रास्तों की सलामती और आलमी इदारों में इस्लाहात जैसे मसाइल नुमाया हैं। ऐसे हालात में तरक्की पजीर और उबरती हुई मईशतों का एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर मुश्तरक हिकमत अमली तैयार करना आलमी इस्तेकाम के लिए मुस्बत इशारा समझा जाता है। ब्रिक्स ममालिक की ये सोच इस बात की है कि दुनिया को एक तरफ निजाम के बजाय ज्यादा मुतवाजन और शराकती आलमी ढांचे की जरूरत है, जहां हर खित्ते को मसावी अहमियत हासिल हो। हिंदुस्तान में इस अहम इजलास का इनकाद इस बात की अलामत भी है कि मुल्क आलमी सिफारती सरगर्मियों में एक मौसर किरदार अदा कर रहा है। इक्तिसादी तरक्की, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और आलमी रवाबित में तेजी ने मुल्क को एक मजबूत मकाम अता किया है। इसके असरा जम्मू कश्मीर जैसे खित्तों के लिए भी अहम हो सकते हैं, जहाँ सियाहत, तजारत, दस्तकारी, बागबानी और नौजवानों के रोजगार से वाबस्ता शोबे आलमी ताउन से नई रफ्तार हासिल कर सकते हैं। अगर इलाकाई वसाइल को बैनुल अक्वामी मंडियों और जदीद माशी मवाके से जोड़ा जाए तो जम्मू कश्मीर तरक्की, सरमायाकारी और सकाफती रवाबित का एक मौसर मरकज बन सकता है। वक्त का तकाजा यही है कि बदलती हुई आलमी सूरतहाल को सिर्फ सियासी जाविये से नहीं बल्कि इक्तिसादी, तालीमी और समाजी तरक्की के तनाजुर में भी देखा जाए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत और मुस्तहकम मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाए। तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान।

उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूच इलाहदी की पसंद पाकिस्तान में एक तवील अरसे से सरगर्म हैं और ये कोई नया मजहर नहीं। ताहम दारुलहुकूमत के कलब में होने वाले इस हमले ने उस अमन को नुकसान पहुंचाया जिसके अफगान शहरी 2021 में जंग के खात्मे के बाद से आदि हो रहे थे। इन हालात ने एक बार फिर तशद्दुद और खूनरेजी की वापसी के खदशात को जन्म दिया है। समिन ज्यादातर मुतासरीन के खानदानों को इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि उनके प्यारों के साथ होने वाले इस वाकये पर किसी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। एक मुतासर शख्स के भाई का कहना है कि हम एक मजलूम कौम हैं, हमारे पास जवाब देने की ताकत नहीं, हमने नाइंसाफी और जुल्म सहा है। समिन प्रोग्राम में आपसे करेंगे और भी बातें। आज जुमतुल मुबारक है, पहले फैज़ याब होते हैं इस नातिया कलाम से।

वादी की आवाज इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। समीन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान का मुतवस्त और गरीब तबका इस वक्त शदीद तरीन माशी दबाव का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगी सूरत हाल के असरात पूरी दुनिया की मईशत पर मुरतब हुए हैं। मशरिकी वस्ता में तवानाई के बुनियादी ढांचों पर हमलों ने आलमी तेल मार्केट को शदीद अदम इस्तेकाम से दो चार कर दिया है। समीन इस आलमी बहरान के असरात पाकिस्तान जैसे दरामदी मईशत रखने वाले ममालिक पर ज्यादा शिद्दत से पड़ रहे हैं, मगर पाकिस्तान में मसला सिर्फ आलमी मार्केट नहीं बल्कि हुकूमती मुआशी पॉलिसियों का भी है, जिन्होंने आवाम के लिए सूरत हाल मजीद मुश्किल बना दी है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ते हुए टैक्स और लेवी ने महंगाई की नई लहर वहां पैदा कर दी है। हालिया दिनों पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया उसकी बुनियादी वजह आलमी मार्केट में कीमतों का इजाफा नहीं बल्कि टैक्सेस और लेवी में इजाफा है। पेट्रोलियम पर आयद लेवी में 13.91 रुपये इजाफा किया गया, जिसके बाद ये 103.50 रुपये से बढ़कर 117.41 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। इसी तरह डीजल पर आयद लेवी 28.06 रुपये से बढ़ाकर 42.60 रुपये फी लीटर कर दी गई। इस वक्त वहां पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर तकरीबन 143.67 रुपये मुख्तलिफ टैक्सेस ड्यूटीज और मार्जिनस की सूरत में वसूल किए जा रहे हैं, यानी वहां आवाम माली बहरान से ज्यादा हुकूमती मालियाती पॉलिसियों का बोझ उठा रहे हैं। हुकूमत की दलील है कि IMF प्रोग्राम के तहत महसूलात के अदा पूरा करना जरूरी है। तहम हकीकत यह है कि हुकूमत ने महसूलात बढ़ाने के लिए आसान तरीन रास्ता इख्तियार किया है, बराए रास्त टैक्स इसलाहत, टैक्स नेट की तौसी और FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करके फौरी रेवेन्यू इकट्ठा करने की पॉलिसी अपनाई है। ये पॉलिसी वहां वक्ती तौर पर हुकूमती खजाने को सहारा तो दे सकती है, मगर पाकिस्तान की मईशत पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। समीन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अखराजात नहीं बढ़ाता बल्कि हर शोबे पर असरअंदाज होता है। खुराक सब्जियां अदवियात बिजली सन्नती पैदावार और तामीराती लागत सब कुछ महंगा हो जाता है। यही वजह है कि महंगाई का तूफान शिद्दत वहां इख्तियार कर चुका है। एदादोशुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 10.89% तक पहुंच गई, जबकि माली साल 2025-26 में जुलाई से अप्रैल तक औसतन महंगाई 6.19% रही। पाकिस्तान में आम आदमी की कुव्वत खरीद मुसलसल कम हो रही है। तनख्वाहदार तबका, मजदूर और छोटे कारोबारी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। IMF के साथ तयशुदा माहिदे के तहत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,468 अरब रुपये इकट्ठा करने का हदफ रखा था, तहम पाकिस्तानी हुकूमत मई में ही इस हदफ से तजावुज कर गई है। समीन ये सूरत हाल एक बड़े सवाल को जन्म देती है कि अगर टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे अपने अहदाफ पूरा करने में नाकाम हैं तो इसका बोझ सिर्फ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत ने आसान तरीन रास्ते इख्तियार करते हुए पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, मगर इसके नतीजे में वहां अवाम को मुश्किल तरीन माशी हालात का सामना करना पड़ रहा है। प्रोग्राम में और भी कुछ आया चाहता है, इस नातिया कलाम से फैज़याब होते हैं।

वादी की आवाज इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पेश किया जा रहा है। समीन, ईरान जंग के मनफी असरात आलमी इक्तिसादियात को तो मुतासिर कर ही रही हैं, लेकिन मशरिकी वुस्ता की कशीद सूरतहाल ने लाखों पाकिस्तानी घरानों के बजट को भी शदीद मुतासिर कर दिया है। खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से अपने घर वालों को इरसाल करदा रकूम से लाखों खानदान अपनी बुनियादी जरूरियात पूरा करते हैं, ताहम मशरिक वुस्ता में कशीदगी की वजह से सूरतहाल मुख्तलिफ होती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज्यादा तरसीलात जर आती हैं। बीरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर अपने घर वालों को भेजते हैं और इन रकूमात की बड़ी मकदार खलीजी ममालिक से ही आती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मेजबान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

हम आकाशवाणी भद्रा से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। समय रात के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं चंद गोजरी नगमे।

सामीन, कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे अंग्रेज़ी में खबरें, 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रिले का ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री

0: मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 बिलियन US डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन

0: आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया।

0: अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर-17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर-15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security.